और मत तुसनु अगले वजब तुना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजब को आए अगला मवे पाना खाए जिसने दिता खावना तिस कहिया साहब आस नाल घूमना चले नाल खसम चल।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ FM ਬੈਂਡ 103.6 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है।

0: 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनिए महात्मा गांधी दे प्रेरक प्रसंग गांधी चर्चा।

एक बार बापू ने अपनी गरीबी इन्हां शब्दां विच बयान कीती सी। मेरी कोई जायदाद नहीं है, फिर भी मैं महसूस करदा हां कि मैं शायद दुनिया दा सब तो वध अमीर आदमी हां। मेरे लिए त्याग बहुत लाहेवंद रहा है। मेरा संतोष ही मेरा सब तो वड्डा खजाना है। इसलिए शायद ये कहना ही ठीक होवेगा कि भावें मैं गरीबी का प्रचार करदा हाँ, फिर भी मैं एक अमीर आदमी हाँ। एक दिन बापू बंगाल दे एक जिमीदार दे परौने सन। उसने सोने दे बर्तना विच बापू नू दूध ते फल पेश किते। बापू जानदे सन कि

ए गरीब रायत दी कमाई तो आए सन। बापू ने पूछया, मैं इस ऐश नू किवें स्वीकार कर सकता हाँ? मैं सोने दियां प्लेटां विच खा लवां, जेकर तुहाडे मुजारे घट्टो घट चांदी दियां प्लेटां विच खाण दे योग होण। जदों ओ इन्ने दुखी ने तां फिर तुहानूं इह ऐश करन दा हौसला किवें पैंदा ए? एक वार बापू ने एक मंत्र दस्या सी, जदों कदे भी तुहानूं किसे काम बारे शंका होवे तां तुसी उस गरीब तो गरीब आदमी दा चेहरा अपने सामने लियाओ जिहड़ा अपनी जिंदगी विच तुसी वेख्या होवे। फिर तुसी अपने आप नूं पुछो कि मैं जिहड़ा काम करन लगा हाँ उस नाल उस आदमी नूं की फायदा पहुंचेगा। ये सोच के फिर काम करो। बापू दियां सारियां लहरां आम जनता दी हालत सुधारन लई सन। एक बार अपने लून दे प्रसिद्ध सत्याग्रह बारे उन्हां कहा सी कि मैं मुफ्त लून दी मंग भारत दे गरीब ते अध भुखे पेंडुआं लई कीती सी। टैगोर ने बापू बारे लिखिया सी, दीपक आप बलदा ए ते होरनां नूं जानन देंदा ए। बापू गरीबां लई ही सारी उम्र जीए ते काम करते रहे।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे हां खेतीबाड़ी प्रोग्राम।
1: खेतीबाड़ी

प्रस्तुत है रामचरितमानस के बालकांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम के यश की कथा कही है।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्व गमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समा

0: राजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वैब्रेंट विलेजेस् इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 40% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्चस्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव IVF चिकित्सालयानां ART केन्द्राणां अथा युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासङ्गिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेनाद्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बज चुके ने, हुण तक दी मुख खबरां सुनो। विदेश सकत्तर विक्रम मिसरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ते ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अबानीज विचकार गहन ते बेहद उसारू गलबात ने दोवां विचकार डूंगे निजी ते रणनीतिक संबंधां नूं उजागर कीता है। भारत ते रूस ने दहशतगर्दां ते दहशतगर्द जथेबंदियां दे खिलाफ ठोस कार्रवाई का सद्दा दिता है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि 2047 तक भारत नूं एक विकसित राष्ट्र विच बदलण लई बुनियादी विज्ञानां विच एक मजबूत आधार होना चाहिए। केंद्र सड़क आवाजाई ते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क आवाजाई खेतर लई साफ विकल्प ईर्धन ते उन्नत तकनालोजी वल तुरंत तब्दीली सब तो वड्डी लोड़ है। पंजाब विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध तहत 11 ते 12 जुलाई नूं सूबे भर दे सारे वोटर केंद्रां ते गणना फार्म जमा कराउण लई 2 दिना विशेष कैंप लाया जाएगा। पंजाब दे जल स्रोत मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने लुधियाणा दे पिंड ससराली कलोनी विखे सतलुज दरिया दे तुसी बन दे चल रहे कार्यां दा जायजा लिया ते अधिकारियां नूं बरसात दे मौसम नूं ध्यान विच रखदिआं सारे काम निर्धारित समय अंदर ते उच्च गुणवत्ता नाल मुकम्मल कीते जाण दी हिदायत कीती। पंजाब दे व्यापार ते सनत मंत्री अमन अरोड़ा वल्लों नवीनता संचालित उद्यमां लई पंजाब नूं भारत दे सब तों पसंदीदा स्थानां वजों कायम करन दे उद्देश नाल 2 अहम पहल कदमियां पंजाब निवेशक सर्कल ते स्टार्टअप पंजाब हब न्यूरॉन 2.0 दी शुरुआत कीती गई। पंजाब दे खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ते जम्मू कश्मीर दे मंत्री श्री सतीश शर्मा ने दोवां राज्यां दे किसानां दी बेहतरी लई अंतरराज्जी सहयोग नूं होर मजबूत करन बारे विचार वटांदरा कीता। सरकार ने सोशल मीडिया ते उस दावे दा खंडन कीता है जिस विच कहा गया है कि ईरान ने भारत आ रहे एक LPG टैंकर ते मिजाइल हमला कीता सी। दक्षिण पछमी मानसून पूरे देश विच पहुंचया। ते नौजवान मामलियां ते खेडां बारे मंत्रालय ने सारे मानता प्राप्त राष्ट्रीय खेड संघां नूं ओलंपिक योग्यता ते चोण मार्ग प्रकाशित करन दा निर्देश दित्ता है जिस विच लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेडां लई अथलीटां दी चोण लई अपनाए जाण वाले मापदंड ते प्रक्रिया शामिल है। ए सन हुण तक दीआं मुख खबरां।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सोनी स्वेर प्रोग्राम सुनने वाले नो वीरेंद्र दा नमस्कार है जी। सुनाओ जी हाल चाल सेता सारा कुछ ठीक ठाक है ना। चलो वधिया गल है। आज सवेरे सवेरे तुसी एक काम बहुत वधिया कीता है जेड़ा अद्धा पौना घंटा सैर कर रहे हो। इस सैर नाल तुहाडा बीपी कंट्रोल च रहेगा। वजन घटाउण दा जो टीचा तुसी मिथ्या सी ना हो पूरा हो जाएगा। ते जे सैर तुहाडी ना छुट्टण वाली आदत बन गई ना तो फिर सारी उम्र तुसी ऊर्जा ते उत्साह नाल भरे रहोगे। जिंदगी च काम काम ही नहीं लगना। ते जे सैर तुसी पार्क विच फुल बूटियां ते रुखां दी संगत विच कीती है ना ते फिर तां सोने ते सुहागा है। रुखां दी संगत तुहाडे च चाह ते उत्साह भर दिंदा है। ते इह कोई सुणी सुणाई गल नहीं है, बकायदा इहदे ते खोज होई है। चाइना दे एक विज्ञानी ने 20 साल रुखां दी खोज कीती ते इह पाया कि रुख इदां दे कैमिकल्स वातावरण विच छड्दे ने जो तुहाडे खून विच जदों मिलदे ने ते उह तुहाडे अंदर दे स्ट्रैस हारमोनस नूं खत्म कर दिंदे ने, तुहाडी इम्यूनिटी नूं मजबूत कर दिंदे ने। वेख लो जी, रुख बेजुबान ने पर यह तुहाडी ऊर्जा ते तंदरुस्ती नूं बुलंद जुबान दिंदे ने। रुखां दी संगत च तंदरुस्ती है। तुसीं जे रुख लाउंदे हो ते इह तुहानूं कोई मानसिक रोग नहीं लगण दिंदे। सो जी सानूं कोई मानसिक रोग ना लगे इसलिए असीं रुख लाइए, इन्हां नाल दिल लाइए, रोज़ थोड़ा समा इन्हां उत्ते लाइए, फिर साडी जिंदगी च तंदरुस्ती ते चाह दे मेले लगे रहणगे। फिलहाल सोहणी सवेर प्रोग्राम च सुरां दा मेला लगण लगा। एक गीत सुनो ते फिर मिलते हैं। आकाशवाणी जलंधर ते सोहणी सवेर प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: एक विशेष सूचना।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी

0: ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब चार दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल

0: के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
3: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR

0: तीन साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0
0: तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा, द हेडलाइंस। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अग्री टू ऑपरेशनलाइज देयर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट, पेविंग द वे फॉर यूरेनियम एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government forms seven-member committee to draft uniform civil code for the state.

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जारी किया। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दसिया कि दोवां देशां ने यूरेनियम सप्लाई अते एक महत्वपूर्ण खनिज लांघे ते इतिहासक समझौतियां ते दस्तखत कीते ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक तकनालोजी ते वसीला सुरक्षा दे खेत्रां विच भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस पहलकदमी तहत आस्ट्रेलिया भारत साइबर अहम तकनालोजी ते सप्लाई चेन भाईवाली लागू कीती गई है। बाद विच प्रधानमंत्री मोदी ने आस्ट्रेलिया दे मेलबोर्न विच मेलबोर्न मीट्स मोदी समागम विच बोलदिया कहा कि भारत आस्ट्रेलिया गठजोड़ नवीं ऊंचाइयां ते पहुंच गया है। 12 साल विच आस्ट्रेलिया दे अपनी तीजी यात्रा विच प्रधानमंत्री ने 10 लाख तो वध भारतीय प्रवासियों नूं दवली दोस्ती दा आधार दस्या। श्री मोदी ने कहा कि भारत विच चिप्स तो जहाजा तक एक निर्माण प्रणाली विकसित की जा रही है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के तीजे ते आखिरी पड़ा ते आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचणगे। श्री मोदी अपने न्यूजीलैंड के हमरुतबा क्रिस्टोफर लक्सन नाल गलबात करेंगे। दोवे नेता समुचे दवले संबंधा का जायजा लैणगे, जिस विच पिछले 2 सालों विच अहम प्रगति हुई है, खास करके व्यापार ते वणज ते रक्षा के खेत्रां विच। न्यूजीलैंड की यह यात्रा 40 सालों विच किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली में सरहदी जिलों के पुलिस सुपरिटेंडेंट की एक कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी की। सरहदी राजा और केंद्र शासित प्रदेशों जिन्हों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तो उत्तर पूर्वी राज शामिल ने, दे पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं श्री शाह ने कहा कि एक सुरक्षित सरहद, एक खुशहाल सरहदी खेतर अते एक चौकस समाज रल के देश नूं सुरक्षित बना सकते ने। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश नूं पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाउण लई एक मजबूत प्रणाली बना रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार ने विज्ञानक तौर ते सरहदी बुनियादी ढांचे विच 400% वादा किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हवाला देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि इस पहलकदमी तहत प्रवास नूं रोकण, नौकरियां पैदा करन अते सरकारी भलाई योजनावां नूं 100% लागू करन नूं यकीनी बनाउण दे यतन कीते जा रहे ने। मंत्री ने भी कहा कि सरकार 1600 किलोमीटर तो वध लंबी भारत म्यांमार सरहद ते 31,000 करोड़ रुपए की लागत नाल वाड़ ला रही है। उन्होंने यकीनी बनाने की महत्ता ते जोर दिता कि सरहदी खेत्रां विच असाधारण कारकां कारण होण वालियां आबादी संबंधी तब्दीलियां बारे जानकारी जमीनी पद्धर तो उच्च पद्धर तक जल्द तो जल्द पहुंचाई जाए। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के उद्देश गुजी जंग, गैर कानूनी घुसपैठ, कट्टर बनाए जाना, नशीले पदार्थों की तस्करी, ड्रोन नाल संबंधित खतरे, साइबर अपराध, संगठित अपराध और आबादी संबंधी तब्दीलियां नूं रोकना और सरहदी खेत्रां नूं वधेरे रहण योग बनाउणा है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत अपने हुनरमंद कार्यबल, मजबूत संस्थावां ते नवीनता दे कारण आलमी समर्था केंद्रां GCCs लई सब तो पसंदीदा देशां च शामिल है। नवी दिल्ली विच CII राष्ट्रीय GCC व्यापार सम्मेलन 2026 नूं संबोधन करदिआं खजाना मंत्री ने कहा कि देश विच 2100 तो वध GCCs ने जो सीधे तौर ते 23 लाख तो वध लोकां नूं रुजगार दिंदे ने। एक केंद्र सालाना करीब $10,000 करोड़ दा मालिया पैदा करदे ने। उन्होंने कहा कि एक केंद्र इंजीनियरिंग खोज, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मालिए उत्पाद डिजाइन ते डेटा विज्ञान नूं एक थां लिया के नवीनता नूं उत्साहित कर रहे ने। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा xhandle@eirrn जलंधर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कुवैत की अपनी यात्रा पूरी करने बाद ओमान पहुंच गए ने। ओमान के विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल शेख अहमद अल मस्कारी ने उन्होंने स्वागत किया। डॉ जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसल्स के 11 दिन दौरे ते ने। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ E85 ਈਂਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

0: प्रोग्राम चल रहा है जी, महक पंजाब दी। तुसी सुन रहे से गीत फिल्म एक कुड़ी पंजाब दी, गायक ते कलाकार अमरिंदर गिल दा गाया। अगले गीत तो पहला एक छोटा जा ब्रेक।
1: पापा कॉलेज दी फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस दे कुछ पैसे असी किसे होर खाते विच रखे सन?
2: दो साल तो खाते विच कोई लेन देन नहीं होया है। हो सकता है इनऑपरेटिव हो गया होवे।
4: ता हुण बैंक जाओ जा वीडियो केवाईसी राही केवाईसी अपडेट करवाओ। खाता होवेगा एक्टिव बिल्कुल मुफ्त।

0: चलो
1: किथे
0: एडमिशन लेन ली खाता होया एक्टिव
2: आरबीआई कहंदा है
3: जानकार बनो सुचेत रहो
4: की तुसी रेडियो प्रोग्राम जा वधिया कंटेंट बनाउंदे हो आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका प्रसार भारती अपनी
5: आओ सुनदे हां फिल्म जट एंड जूलियट दा गीत गायक ते कलाकार दिलजीत दोसांझ दा

दोस्तों, जदों एक चंगे शायर दे अल्फाज़ा नूं किसे बेमिसाल गायक दी आवाज़ मिल जांदी है तां एक अजिही रचना जन्म लैंदी है जो सालां तक लोकां दे दिलां ते राज करदी है। गज़ल भी अजिही एक विधा है जो इश्क, विछोड़े, उम्मीद अते जिंदगी दे हर रंग नूं बड़ी नफासत नाल बयान करदी है। इसी लड़ी नूं अगे वधाउंदे होए हुण पेश करदे हाँ एक होर यादगार गज़ल रूप कुमार राठौड़ दी आवाज़ विच।

0: नवी स्वेर, नवे गीत, नवियां खुशियां। चलो देखते हैं अगली फरमाइश किसकी आई है। हेलो जी, कौन गाल कर रहा है?
1: हेलो,
0: सत श्री अकाल जी, की हाल है?
1: सत
0: तुहाडी आवाज बहुत घट आ
1: श्री
0: रही है।
1: अकाल
0: बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। की करदे हो
1: मैडम
0: तुसी?
1: जी, मेरा अज बोलता
0: की करदे हो तुसी?
1: चंडीगढ़ तो।
0: ठीक है जी। होर मौसम दा की हाल चाल है उधर?
1: मौसम मैडम जी हम तो साफ है जी, सारी रात बारिश होती रही
0: ठीक है। तुसी साडे श्रोतियां नूं कोई
1: है
0: सुनेहा
1: जी।
0: देना चाहोगे?
1: श्रोतिया तो इदा ही है जी, मतलब के हरेक का भला करना चाहिए, किसी का मतलब के मदद करो जो हो सकती है, तो किसी का मतलब बुरा नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। सानू किसी दा ना बुरा सोचना चाहिए ते ना करना चाहिए। केड़ा गीत सुनोगे?
1: भला नहीं भला चंगा नहीं कर दे सकते, माड़ा भी ना करो।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। केड़ा गीत सुनना चाहोगे?
1: बीबी हो तो ऐसी फिल्मों का गीत सुनना जी, फूल गुलाब
0: ठीक
1: का।
0: है जी। चलो जी, फरमाइश पूरी करते हैं। राजू जी चंडीगढ़ तो ये सुनना चाहते ने,
1: धन्यवाद जी।
0: बीवी हो तो ऐसी मूवी दा ए गीत।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी, हेलो फरमाइश, जिथे तुसी सुनते हो अपनी फरमाइश दे मन पसंदीदा गीत। कॉल कर रहा है जी 0181 2342 173। देखते हैं जी साढ़े अगले कॉलर कौन ने। हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: कौन गल कर रहा है जी?
1: मैडम जी। मैडम मैं सतपाल बोल रहा लुधियाने तो। हाँ
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। केड़ा गाना सुनना चाहोगे?
1: जी,
0: केड़ा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना मैडम जी फिल्म श्री फरहाद है, गुजरा हुआ जमाना, लता मंगेशकर की आवाज।
0: ठीक है जी, लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं जी यह गीत।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक-वक प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। बधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: सुरां दी ये महफिल मुकदी नहीं, बस रंग बदलते रहते ने। प्रोग्राम चल रहा जी, हैलो फरमाइश, देखते हैं साडे अगले लिसनर कौन ने। हैलो, हैलो, कौन गल कर रहा जी?
2: हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, की हाल चाल?
2: बढ़िया हाँ जी, आप सुनाइए।
1: बस ठीक है, कौन गल कर रहा है?
2: ग्राम नंगला काचान, पोस्ट औरंगाबाद, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साहब की बात कर रहा हूँ।
1: केड़ा गाना सुनना चाहोगे
2: जी?
1: केड़ा गाना सुनना चाहोगे?
2: आपकी आवाज कट के आ रही है मैम।
1: मैं कह रही हूँ, केड़ा गाना सुनना चाहोगे तुसी?
2: दिलवाले का कितना हसीन चेहरा।
1: ठीक है जी, गाना सुनते हैं जी, कुमार सानू दी आवाज विच, इंजॉय करते हैं।

0: को डर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: प्रोग्राम एंजॉय कर रहे सी। हैलो फरमाइश, मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। कुछ ही पला भी तुसी सुनोगे हिंदी च समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जन संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि।

0: की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों तथा भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय कारोबारी बैठकों से लेकर प्रतिष्ठित स्थलों तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
2: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 से खेला जाएगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनते हैं जी प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनते हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। इस प्रोग्राम च अपनी फरमाइशा भेजने लई व्हाट्सएप नंबर नोट करो जी 94565-6077। रिपीट कर दें 94565-6077 ते टाइप करो जी अपने मनपसंद गीतां दे बोल, अपना नाम ते अपने शहर दा नाम ते सानू व्हाट्सएप राही भेज दिओ जी।

गलबात सी पर तू ना समझ सकी, ए साहां दी मुलाकात सी पर तू ना समझ सकी, कुछ अणछुए जज्बात सी पर तू ना समझ सकी, साडी कल्यां दी औलाद सी पर तू ना समझ सकी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख

0: भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहु सांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
2: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:05 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार। प्रोग्राम बसते बड़े लैके अर्चना हाजिर
0: और अर्चना के नाल नाल ज्योति भी हाजिर है जी।
1: मेरी ज्योति की हाल चाल है थोड़े?
0: भी हाल चाल तो बहुत वधिया है। ते अर्चना तुसी मेरा नवा सूट नहीं हले तक देखिया।
1: मैं देखती पई सी, मैं क्या ले प्रोग्राम शुरू तो हो जाए, सारिया भैणां दे सामने इहदे सूट की तारीफ कर दे। भी सूट तो इन्हां ने बहुत ही सोहने रंग का भी ते स्टाइल का पाया हुआ है।
0: पर नवा सूट सोहना भी है, लै के तां भी मैं ना मैनू तसल्ली जी नहीं हुई, मैं खुश नहीं हाँ।
1: जी तसली दी तुसी गल कीती, भी तसली किवें हुंदी है?
0: देखो ना, मैनू लगता कि मैं थोड़ा जिहा ना महंगा ले आई अर्चना। मैं ना दुकानदार नू कुछ भी नहीं कह पाई कि भाई थोड़ा जिहा घट करो या कोई मतलब सानू
1: मोल भाव नहीं
0: मोल
1: कीता
0: भाव नहीं
1: तुसी?
0: किया।
1: अच्छा।
0: और मैनू

पूरा ट्रक न्याणिया दा एक विच दाज दे आया जे आउंदा अतबार ना तैनू मेरे उत्ते नारे देव थरीकिया वाले कोलों पुछ ला तू मटियारे आथण नू लेके जाना उना ले मुर्गी दाना जे करे पहुंच गए कले लो वोटी।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਜਦੇ ਵੇਲੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
2: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफ़ी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और

0: अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिला के भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है जी अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उनां दा प्रसारण समां।

0: जिसके तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया की तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई के लिए बंदोबस्त को कतई शक्ल दी गई है। इस तरह 2014 के बुनियादी फ्रेमवर्क का यादा किया गया है। बातचीत में दिफाई सलामती पर भी खासतौर पर तवज्जो मरकूज की गई, जैसा कि दोनों समंदरी मुल्कों ने दिफा और सलामती से मुतालिक तावुन नीज एक आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के लिए समंदरी सलामती के इश्तराक के खाके को भी मुश्तरका ऐलानिये की शक्ल में मंजूर किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात बरकरार रखते हुए वजीर आजम ने अपोजिशन के रहनुमा एंगस टेलर से भी मुलाकात की। उन्होंने जनाब मोदी को अपने मुल्क का एक सच्चा दोस्त करार दिया। उन्होंने बैन अलावामी शमसी इत्तेहाद और पुरअमन यूरेनियम बरामदात जैसे बुनियादी इकदाम की हिमायत की। ये दौरा मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलों की सिफारतकारी की शक्ल में इख्तिताम पजीर हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेलकूद से मुतालिक इश्तराक के खाके का भी बाकायदा आगाज किया, जिससे खेलकूद और बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा। जैसा कि भारत 2030 के दौलत मुश्तरका खेलों और ऑस्ट्रेलिया 2032 के ब्रिस्बेन ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है। तफसील हमारी नामनिकार से।
1: इस यादगार सरकारी दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की वजह से महज सिफारती सरगर्मियों ने मरबूत और कसीर सतही इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके तहत सनती कारोबार में इजाफा हुआ है, आला टेक्नोलॉजी वाले दिफाई खाकों को बेहतर शक्ल मिली है, ख्वा वो न्यूक्लियाई सप्लाई का बंदोबस्त हो या एमसीजी में खेलकूद की सिफारत हो। दोनों मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल इस्तेकाम के लिए एक राहदारी मुकर्रर कर दी है। अपने दौरे के इख्तिताम के बाद अपने तीन मुल्कों के दौरे के अगले तारीखी मरहले के तहत वजीर आजम बराह रास्त न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड पहुंच गए हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: मरकजी हुकूमत ने नशीली अशिया के 1945 के जाब्तों में तरमीम की है, जिसका मकसद ज्यादा अल्कोहल पर मुश्तमिल नशीली दवाओं के जाब्तों को मुस्तहकम बनाना है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमिल दवाओं के लिए लाइसेंस की जरूरत में मौजूदा इस्तस्ना को खत्म कर दिया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12% से ज्यादा एथाइल अल्कोहल पर मुश्तमिल वो दवाएं जिनकी मकदार 30 मिलीलीटर से ज्यादा है, अब इन पर शेड्यूल के तहत कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस तरह की मसनूआत के लिए अब नशीली अशिया और कॉस्मेटिक्स कानून 1940 के तहत लाइसेंस की जरूरत होगी। भारत ने महाजराई और लड़ाई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है और उसे मुख्तलिफ तबकों पर ज्यादती इख्तलाफ राय को दबाने और लोगों के खिलाफ जुल्म ज्यादती के लिए जंग दहशतगर्दी ईजा रसानी और सियासी जबर का वसीला करार दिया है। महाजराई से वाबस्ता जिनसी तशद्दुद के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के खुले मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि इस तरह का तशद्दुद बेरोक टोक जारी है और भारत इस तरह की वहशियाना हरकतों की सख्त मजम्मत करता है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में तस्दीक शुदा वाकयात में नुमाया इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि इज्तिमाई कार्रवाई की फौरी जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज कहा है कि साफ सुथरी तवानाई की मुल्क की बिजली की मांग का 50% से ज्यादा हिस्सा पूरा कर दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि काबिल तजदीद वसाइल से इस महीने की 6 तारीख को बिजली की सप्लाई का 52% हिस्सा हासिल हुआ है। वजीर मौसूफ ने इसे भारत के माहौल के लिए साजगार तवानाई के ईको निज़ाम की बढ़ती हुई ताकत और इन्हिसार का सबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत बिजली के मैदान में रफ्तार और अज़्म के साथ लगातार तरक्की कर रहा है। नीति आयोग की रुकन डॉक्टर जोरामानिया ने यूनिसेफ भारत नुमाइंदा सिंथिया मैकैफ्री और उनके वफद के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसका मकसद बच्चों पर मरकूज तरक्की, स्कूल तालीम और इंसानी तरक्की से मुतालिक इश्तराक को तकवीत देना था। नीति आयोग के मुताबिक बातचीत में महफूज और सबकी शमूलियत वाली आमोजिश, बुनियादी खानदगी और असातिज़ा की तालीम, तलबा की खुशहाली, साइबर हिफाजत और खासतौर पर उमंगों वाले जिलों और ब्लॉकों में डिजिटल सलामती पर तवज्जो मरकूज की गई। मशहद में इमाम रजा बारगाह में ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनाई की तदफीन हुई और इसमें हजारों की

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है, और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच

0: खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: And we've always had a good close relationship with India in playing hockey and the early Indian teams that came here 100 years ago.
0: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
4: टुडे भारत इज मार्चिंग कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स द विजन सेट बाय आवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ए विकसित भारत।

0: by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: तो 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
1: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर

0: वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा, वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 2:30 हो रहे ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हाँ बरजिंदर मचला जट दी आवाज़ विच एक गीत।

जी बिल्कुल नचोगे मेरे नाल। चल रहा प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां, ते लो जी चिट्ठियां विचों लैके आई हैं जी। केड़ी? जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल नवनीत ते पप्पी पाटिया, मक्खू फिरोजपुर तो बिला बजाज, हैप्पी कपूर ते मनीष बजाज, मुक्तसर तो लिख रहे ने बाबू सिंह तिमान, बलजिंदर कौर, रवनीत, निशु ते भुपिंदर, कनेरा मोहला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, हार्दिक, निहारिका ते वंश बत्ता, फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांदा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर ते सारा परिवार। ते कोई भी गीत जो है सुनना चाहते ने ते इन्हां सारे दी फरमाइश ते सुनदे जी। एक गीत तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

तेरी एक मुस्कान ने मेरे सारे सपने सजा दिते, तेरी एक मुस्कान ने मेरे सारे सपने सजा दिते। असी तां बस ख्वाब ही देखे सी, असी तां बस ख्वाब ही देखे सी, ते तू तां साडी जिंदगी नूं ही सुपना बना दिता है, ते तू तां साडी जिंदगी नूं ही सुपना बना दिता है। जे बिल्कुल तुहाडे भेजे हुए खत इन्ने प्यारे हुंदे ने कि प्यार हो जांदा इन्हां खतां दे नाल, किन्नी मशक्कत दे नाल, किन्नी मेहनत दे नाल तुसीं रोज़ दे रोज़ जो है चिट्ठियां पाउंदे हो। ते लो जी, इन्हां ने ते स्टैंप बना के रखी हुई है ते लिखिया है कोई भी गीत। लिख रहे ने रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक ते सारा परिवार। पिंड कुणियाणा तो लिख रहे ने मलकीत सिंह, मनजीत, दपिंदर ते सारा परिवार। बक्सर बिहार तो शरफुद्दीन अंसारी ते फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराब तो वलीउल्ला अंसारी ते असमा नाज अंसारी, चमल पार्क दिल्ली तो डॉक्टर सोनम ते डॉक्टर अदीबा, सारिंगपुर बक्सर तो राजेश डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी ते गुल्फ राज भागलपुरी। पिंड बालद खुर्द तो लिख रहे ने यानी कि जिला संगरूर तो अश्विनी गर्ग, विनोद, पूजा ते प्रियंका, मुक्तसर तो बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रमनीत ते सारा परिवार। इन्हां सारिआं दी फरमाइश ते आपां सुना रहे जी शमप्रीत ते साथियों की आवाज़ विच गीत है सुन रहे तुसी प्रोग्राम साडे नाल रल मिल के चिट्ठियां मिठियां।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 MHz, FM 100.9 MHz ते FM 103.6 MHz आकाशवाणी अमृतसर अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। शाम दे 4 बज रहे ने, साड़ी दूसरी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा दे शुरू विच आओ सुनदे हाँ हुण तक दे मुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिनों के दौरे ते तीजे अते आखिरी गेड़ च अज न्यूजीलैंड पहुंचे ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सुरक्षित सरहद खुशहाल सरहदी खेतर अते चौकस समाज रल के देश नूं सुरक्षित बना सकते ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वट्सएप ने यूजर नेम फीचर नूं लागू करन संबंधी सरकार नूं अपना जवाब सौंपया। महाराष्ट्र सरकार ने सूबे लई एक सार सिविल जाबते का खरड़ा तैयार करने लई 7 मैंबरी कमेटी के गठन का ऐलान किया है। पंजाब के जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने लुधियाना के पिंड ससराली कलोनी विखे सतलुज दरिया के तुस्सी बन के चल रहे कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों नूं बरसात के मौसम नूं ध्यान में रखते हुए सारे काम निर्धारित समय अंदर मुकम्मल करने की हदायत दी। पंजाब विच विशेष तीबर सोध SIR प्रक्रिया लई सूबे भर के सारे पोलिंग बूथां ते कल तो 2 दिन विशेष कैंप लगाया जाएगा। पंजाब के व्यापार ते सनत मंत्री अमन अरोड़ा वालों नवीनता संचालित उद्यमां लई पंजाब नूं भारत के सब तो पसंदीदा स्थानां वजों कायम करन दे उद्देश नाल 2 अहम पहलकदमियां पंजाब निवेशक सर्कल अते स्टार्टअप पंजाब हब न्यूरोन 2.0 की शुरुआत की है। पटियाला च वोटर सूचियां की विशेष तीबर सोध SIR के काम विच लगे बूथ लैवल अफसर नाल दुर्व्यहार करन वाले व्यक्ति नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौसम विभाग वालों अज उत्तराखंड विच भारी मीह लई अलर्ट जारी। अगले 3 तो 4 दिनों विच हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश ते दिल्ली विच भी भारी मीह पैण की पेशिनगोई है। एसन हुण तक दे मुख समाचार। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण समा हो रहा जी प्रोग्राम सुफियाना कलाम दा। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हाँ जगीर सिंह दी आवाज़ विच एह गीत।

गुरमुखौ किनु दान, अमोल रतन हर दीनो नाम, सहज बिनोद चोज अनंता, नानक काओ प्रभ मिल्यो अचिंता। ए फरमान साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वल्लों पैरों राग विच उचारित है। साहिब फरमाउंदे ने कि उस सच्चे गुरु ने मैनू हरी दे नाम दा अणमुल्ला रतन बख्शिश कीता है, जो किसे भी मुल तो नहीं मिल सकता। हुण मेरे अंदर आत्मिक अडोलता अते आनंद दी अवस्था बनी हुई है। मन सहज अते आनंद भरपूर है, क्योंकि हुण मैनू समस्त चिंतावां दूर करन वाला परमात्मा मिल गया है। हुआ आप दयाल मनो न विसारियन, साद जना कै संग पवजल तारियन। जिन्हां प्राणियों उपर वो प्रभु आप दयाल हो जाता है, उन्हां दे समस्त कारज रास हो जाते ने, ते फिर वो परमात्मा उन्हां नूं अपने मनो विसारदा नहीं। फिर क्यों ना ऐसे मालक दा ऊट आसरा तक्या जावे, जिस दा सिमरन करन नाल सुखां दी प्राप्ति हुंदी है ते सारे दुख पलायन कर जांदे ने। तिस साहिब की टेक नानक मने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। सरवण करदे आं भाई गुरबचन सिंह ते उन्हां दे रागी जथे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरबचन सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। जिस परमात्मा नू चेते कीत्या सारियां चिंतावां दूर हो जांदियां ने ते सुखां दा बसेरा हुंदा है, फिर क्यों ना ऐसे प्रभु नू हर साह दे नाल याद कीता जावे ते उसदा नाम जपया जावे। हो है अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल। उस परमात्मा दा नाम कल्याणकारी ते सुखदायक है। प्रभु दा चिंतन चिंतावां दा अंत कर दिंदा है ते फिर जिथे चिंता नहीं उथे आत्मिक शांति है, समाधि है। अचिंत दी अवस्था प्राप्त ए जीवन तारा जद परमात्मा रूपी सागर विच लीन हो जांदी है तां फिर परमात्मा दा ही रूप हो जांदी है। गुरबाणी विच अचिंत दा संकल्प, आओ सुनदे हां ए वार्ता। वार्ताकार ने सुखनिंदर कौर।
1: ए शब्द एक भाववाचक नाम है जो केवल महसूस किया जा सकता है। अचिंत होना एक अजिही अवस्था है जो शब्दों विच बयान नहीं की जा सकती, फिर भी इसके अखरी अर्थ हैं चिंता मुक्त, बेफिक्र, बेपरवाह ते निश्चिंत। महान कोश अनुसार जिसका चिंतन ना हो सके अते जो ख्याल विच नहीं आता उसनू अचिंत कहते हैं। गुरबाणी अनुसार अचिंत होना मनुखी जीवन की एक अजिही अवस्था है जिस विच जीव अपनिया सारिया सोचा डरां ते दुखां दी चिंता नू प्रभु नाम दे सिमरन दी बरकत नाल मिटा के आत्मक अडोलता नू मानदा है। जीव नू बीमारी दी, मौत दी, दुर्घटना दी जा किसे भी किस्म दे नुकसान दी चिंता निरंतर बनी रहिंदी है। उसदी इच्छा हुंदी है कि वह चिंता मुक्त जीवन बतीत करे, पर जगत दा वर्तारा इस प्रकार दा है कि कदे भी समय अते स्थिति अनुसार कुछ भी वापर सकता है। इस संसार दा सच यही है कि जिस जीव ने जन्म लिया है उसने एक ना एक दिन इस संसार तो जाना ही है, भाव किसे ने भी थिर नहीं रहना। सारी सृष्टि ही चलायमान है, इस वर्तारे विच कोई भी अनहोनी नहीं है। इस संबंध विच नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी इउं फरमाउंदे हन, चिंता ताकी कीजी है जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। भगत कबीर जी एक श्लोक विच जीव नू समझाउंदे हन कि जेड़ा मन सारा दिन माया दियां सोचां सोचता रहिंदा है

सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द अगायन की तासी पाई काशी राम वैमी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: पाकिस्तान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज से डीटीएचडी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण पेश है अज दे प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा का वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज, 1154 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.8 मेगा हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगा हर्ट्ज ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी घड़ी ते 6:20 हो रहे ने। हुण तुसीं सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: आजो आजो बाल साहब आजो।
1: दरबारी साहब जय हिंद जी।
0: जय हिंद जी जय हिंद जी। और सुनाओ बाल साहब।
1: हाली चाली वाह वधिया चढ़दी कला, तुसी सुनाओ।
0: बिल्कुल ठीक है जी। देखो यही जड़ी तुसी गल कीती है ना भी तुसी सुनाओ।
1: हाँ जी
0: असी देखो ये चीज़ सुन के ना बहुत खुश होने हैं,
1: जी
0: लेकिन इंसान जिंदगी च ना कोशिशां करते करते करते कितने ना कितने पहुंचता, जदों
1: जी
0: उदों फिर इंसान नूं खुशी बहुत हुंदी है।
1: वो खुशी तो होनी है जी। देखो हुण इन्नी मेहनत कीती हुंदी है, उदों जदों उहदा फल मिलदा है
0: देखो
1: ते खुशी तो आपे आप होनी है।
0: तुसी कोशिश करके इस बैठक च पहुंचे हो,
1: हाँ जी
0: इदां ही इंसान नूं अपनी जिंदगी च हमेशा कोई ना कोई कोशिश करते रहना चाहिदा है,
1: जी
0: क्योंकि जिंदगी एक इदां दी चीज़ है
1: हाँ जी
0: जिथे तुसी कोशिश छड्ड दित्ती
1: जी
0: उत्थे तुसी अपना जिहड़ा टीचा है उहनूं प्राप्त नहीं कर सकते।
1: देखो जी, कोशिश तो बिना बिल्कुल ही जिंदगी नीरस है। अपने तो जिहड़े धर्म ग्रंथ ने, हुण गीता विच भगवान कृष्ण भी कहिंदे ने कि कर्म करो, वी फल तुसी छड्ड दिओ परमात्मा ते कर्म करदे जाओ।
0: हाँ फल देखो परमात्मा अपने आप दो।
1: सही गल है
0: तुसी
1: जी।
0: देखो ना अपने किसान वीर ने
1: हाँ जी
0: किनियां कोशिशां करते हैं
1: बिल्कुल जी
0: जी। पहला देखो पानी लाते ने, बीज लाते ने,
1: हाँ जी
0: फलों का ना
1: जी
0: किन्नी खुशी प्राप्त होंगी है।
1: सही गल है जी
0: फिर जे कितने किसी वेले कोई अणचाही गल हो जाए
1: हाँ
0: तो वो
1: जी
0: कोशिश थोड़ी छड़ देंगे।
1: हुण तुसी देखो जी, पिछले साल पंजाब विच हड़ आ गए, किन्ना जिहड़ा फसलां दा नुकसान होया, उसदे बावजूद भी इस साल वो सारियां जमीनां ते ही दोबारा फिर झोना लग रहा है।
0: देखो किन्नी मेहनत की उन्होंने, किन्नी कोशिश की कि दोबारा तो असी फिर फसल उगाइए।
1: बिल्कुल जी
0: इदां ही इंसान नूं अपनी जिंदगी च हमेशा कोशिशां करते रहना चाहिए।
1: जी
0: कदे भी कोई भी किसी भी तरीके की अगर कितने कोई इदां दी अणचाही गल हो जाए
1: हाँ जी
0: जिथे आपां नूं कोई ना टीचा साडा प्राप्त हो सके उत्थे फिर लग जाओ दोबारा तो।
1: जिदा बुजुर्ग कहिंदे आ भी ढेरी नहीं ढोनी चाहीदी, लगे
0: हाँ
1: रहो।
0: देखो कीड़ी नूं आपां देखदे हां ना,
1: हाँ जी
0: कीड़ी तुरदी तुरदी तुरदी फिर कितने थले डिगदी है,
1: सही गल है
0: वो
1: जी
0: फिर तुर पैंदी है।
1: बिल्कुल जी
0: इदां ही आपां नूं जिंदगी दे विच हमेशा जिहड़ा है वो कोशिशां करते रहना चाहिए
1: जी
0: तां जो असी हमेशा जिहड़ा है वो अपने टीचे नूं प्राप्त करते रहिए।
1: नाले तां जी कोशिश दे नाल इक जिंदगी च अपने रवानी बनी रहिंदी है। किथे तां बंदा जिहड़ा नीरस हो के बोर हो के साइड ते बह गया,
0: आह
1: किथे उहनूं पता है मैं आरे लगा होया, मैं कोशिश
0: हैं
1: करते रहना आ, ते उस बंदे ते जदों परमात्मा खुश हुंदा है ते उहनूं सोच नालों वध के वी जिहड़ा फल आ उह मिलदा है।
0: देखो जी इसे तरह आपां भी कोशिशां करते रहने हैं।
1: हाँ जी
0: सुनिए दो बोल फिर गाने दे।
1: सुना दिओ जी।

0: 61 241 40 61 इस नंबर ते संपर्क कर सकते हो। तो जेकर कोई किसान वीर इस किते विच नवे ने जिन्होंने हजे काम शुरू करना है तो मैं उन्होंने दसना चाहांगी कि असी 5 दिन की ट्रेनिंग जिहड़ी है वह गुरु अंगद देव वैटनरी ते एनिमल साइंसिस यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे लगाने हैं। तो किसान वीर की लोड़ अनुसार असी साल दे विच एक तो दो वारी या उस तो वध भी जेकर साडे किसान वीर जरूरत है तो यह ट्रेनिंग जिहड़ी आ उन्हां लई असी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ना सिर्फ मच्छी पालन, उस तो अलावा जिहड़ियां जिद्दां सजावटी मच्छियां दा पालन करना है या जिहड़ियां नवीनतम टेक्नोलॉजी अजकल आई है जिहदे असीं RAS बायोफ्लॉक या एक्वापोनिक्स की गल करते हैं उहदी ट्रेनिंग भी जिहड़ी है यूनिवर्सिटी दे विच दित्ती जांदी है। इस तो अलावा जेकर कोई किसान वीर वैल्यू एडिशन जिवें प्रोडक्ट बनाने ने मच्छी तो वख-वख तरह के जिहड़े उत्पाद तैयार करके किवें मुनाफा कमा सकते हैं ये ट्रेनिंग्स भी जिहड़ियां हैगियां यूनिवर्सिटी दे विच दित्तियां जांदियां ने। सो मैं अपने किसान वीरां नूं अखीर दे विच कहांगी कि जिन्नियां भी गल्लां असीं हुण तक कीतियां ने ते मैं उम्मीद करदी हां कि किसान वीर उन्हां दी पालना करनगे ते तां कि उन्हां नूं जिहड़े मच्छी पालण तों नुकसान नहीं बल्कि उह वाधे वल जाण। धन्नवाद।
1: हाँ जी सुनिया जी।
2: हाँ जी सुनिया जी।
1: देखो इसे तरह जिवें आपां कहिंदे ना किसान वीर कुछ ना कुछ कोशिशां करदे रहिंदे ने।
2: हाँ जी
1: आ देखो हुण आपां सुनिया ना मच्छी पालन ते प्रबंध
2: बिल्कुल जी
1: इसे तरह आपां नूं अपने जिहड़े किते है ओह कितियां दे विच इसे तरह कोई ना कोई जिहड़ा है ओह टुकमे प्रबंध करदे रहना चाहीदा
2: जी। बिल्कुल सही गल है जी।
1: लो जी सुणदे आ फिर कुछ दो बोल गीत दे।
2: सुणा दिओ जी सुणा दिओ।

0: हाँ जी सुनिया जी
1: सुनिया जी सुनिया
0: लो जी फिर अपां डॉक्टर सिमरजीत कौर
1: अच्छा जी
0: इन्हां ने सानू जानकारी दित्ती है पशुआं च नस्ल ते सुधार
1: ठीक है जी
0: इन्हां नाल गलबात कीती है साढ़े रुड़िया राम जी ने
1: ठीक है जी
0: सुनदे हां जी
1: क्या बात है जी सुना दिओ
2: डॉक्टर सिमरजीत कौर जी तुसी प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनीमल जेनेटिक्स ब्रीडिंग गुरु अंगद देव एनीमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाणा तों साढ़े कोल आए हो सब तो पहलों देहाती प्रोग्राम की बैठक जी आए कहने डॉक्टर साहब गल ये कि अज जदों आपां किसानी दे च नज़र मारते हाँ कोई वक्त ऐसा सी कि पशु पालन का धंधा जिहड़ा है एक सहायक किते धंधे वजो आपां अपनाउंदे सी पर अज क्योंकि खेती दे उत्ते फसली वजन इन्ना ज़्यादा हो गया तो जोत साडी इन्नी ज़्यादा घट गई है कि सानू हुण पूरक धंधा बन गया खेती साडा सहायक धंधा बन गया तो कुछ जिहड़े ऐसे धंधे है जिहड़े साडे मुख धंधे बन गए जिन्हां दे विच पशु पालन का धंधा आपां सारे जानने आ सियाने कहिंदे आ वी जैसी नसल वैसी फसल पशु पालन किते दा इह कि आधार है तो जे चंगी नसल है तो इहदा मतलब तुहाडा किता धंधा चंगा है तो नसल दे विच किते ना किते कोई कमी पेशी है तो किते धंधे दे उत्ते प्रभाव पैणा सुभाविक है अज इस विषय नूं आपां लैके गल्लां बातां सांझियां करनियां है कि पशुआं दे विच नसल नसल सुधार इहदे फायदे सारियां चीज़ां दा इस किते धंधे दे उत्ते की प्रभाव पैंदा है सब तो पहले तो डॉक्टर सिमरजीत कौर जी यही जानना चाहांगे कि बहुत सारे साडे जिमीदार भरा वाकिफ है बहुत सारे नहीं भी है कि यह नस

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम जेव वेव

0: फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आस्ट्रेलिया का सफल दौरा मुकम्मल करने तो बाद न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुँच गए ने। केंद्र सरकार ने उच्च अलकोहल मात्रा वाली दवाइया के नियमों को होर सख्त करने के कानून में सोध की है। सेहत और परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा करने लई मिशन संचालन समूह की तीजी मीटिंग की प्रधानगी की। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर रूट से स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने लई 206 करोड़ रुपए मंजूरी दी है। इस ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंगे। साडा अगला बुलेटिन भल के सवेरे 8:30 होएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, TRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स से DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो की कड़ी ते 7:40 हो रहे हैं। लो हुण पेश है प्रोग्राम सब रंग।
2: मेरी तकरीर का नवान है 90 साल ऑल इंडिया रेडियो के, कहानी इसकी वसत की। इस कहानी की शुरुआत बगैर मार्कोनी का जिक्र किए अधूरी ही समझी जाएगी। मार्कोनी मुल्क इटली का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिसका उम्र हयात 1874 से 1907 तक ही रह पाया। कामयाबी हासिल करने के लिए उम्र कोई मान्य नहीं रखती, सिर्फ एक जज्बा दरकार होता है कुछ भी नया करने का। यही जज्बा मौजूद था मार्कोनी के दिल में भी कुछ मुख्तलिफ करने के लिए। इस जनून ने आखिर एक सूरत अख्तियार की। 1895 में जब उसकी उम्र महज 21 साल की थी, उसने एक कारनामे को सर अंजाम दिया। उसने अपना पहला रेडियो ट्रांसमिशन था जिसका दायरा सिर्फ 1 मील तक महदूद था। ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी अगला कदम उठाने की जानब इशारा करती है। 1901 में दायरा वसत बहरुल काल यानी अटलांटिक ओशन तक हो गया। इस कामयाब ईजाद का असर आज दुनिया के तूलो अर्ज़ में आया है। एक मुहावरा मशहूर है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मेरी काविश है कि इससे आगे कुछ कहने की हिम्मत करूँ। वो अल्फाज हैं, जहाँ ना भी पहुँच पाए कवि वहाँ पहुँचे वायरलेस की छवि। दुनिया को मार्कोनी के इस देन को सलाम। आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इसके साया में सकून हासिल कर रहा है। ऑल इंडिया रेडियो के वजूद में आने से 13 साल कबल यानी जून 1923 में बम्बई के रेडियो क्लब ने मुल्क में अपना पहला नशरिया तजर्बा किया। इसके महज 5 माह बाद कलकत्ता रेडियो क्लब ने अपने नशरी प्रोग्राम को एक शक्ल अता की। अजामबाद इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कमेटी ने 23 जुलाई 1927 को अपना चेहरा नमोदार किया, लेकिन माली तंगी के जेर असर महज 3 साल से भी कम वर्षा तक अपना वजूद कायम रख सके। अप्रैल 1935 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर के तहत काम करने लगी तजर्बाती बुनियाद पर। इसके पहले कंट्रोलर का नाम था लायनल फील्डन, यानी वो पहला कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मुकर्रर हुआ था। उसके अगले ही माह मैसूर का रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। डॉक्टर एम बी गोपाला स्वामी महाराजा कॉलेज मैसूर में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। ये रेडियो स्टेशन उन्हीं के निजी रहायशगाह में मुकीम था। आकाशवाणी लफ्ज़ उन्हीं की देन है, यानी आवाज़ जो आसमान से आई। 1938 में कलकत्ता शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह हुआ। वहाँ डॉक्टर रविंद्र नाथ टैगोर ने अपनी एक नज़म में आकाशवाणी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, यानी इस लफ्ज़ को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और लफ्ज़ की तायद की। 8 जून 1936 के रोज़ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया रेडियो का इस्म अख्तियार किया। महज 14 माह बाद अगस्त 1937 में

सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ख़ुद को मंजरे आम पर लाई और उस साल ऑल इंडिया रेडियो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के तहत लाया गया और इसके चार साल बाद ऑल इंडिया रेडियो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत काम करने लगा। जब मुल्क हिंदुस्तान को अगस्त 1947 में तकसीम किया गया तो हिंदुस्तानी हिस्से में सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन थे जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली में मुकीम थे। पाकिस्तान हिस्से में 3 रेडियो स्टेशन लाहौर, पेशावर और ढाका में हाजिर थे। उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो की वसत महज 2.5% इलाका तक महदूद थी और सिर्फ 11% आबादी इसकी तहवील में आई थी। 1948 में सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया और वो 2 हिस्से थे, न्यूज़ सर्विस डिवीज़न और एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न। 1956 में आकाशवाणी नाम नेशनल ब्रॉडकास्टर के लिए मौजू समझा गया। विविध भारती सर्विस का एहतमाम 1957 में किया गया और इसकी बुनियाद में था एक मकसद, आवाम की पसंदीदा फिल्मी गीत। ऑल इंडिया रेडियो ने जो कामयाबी हासिल की दुनिया के तूलो अर्ज में एक मिसाल के तौर पर समझा गया। आज ये फैलाओ 591 रेडियो स्टेशन तक अपना जलवा बखेर रहा है और मुल्क हिंदुस्तान का 92% हिस्सा इसके जादुई असर की लपेट में है। रेडियो स्टेशन की तादाद ज़रूरत के मुताबिक लोगों तक रसाई की नस्बत से घटती बढ़ती रहती है। लद्दाख में 13,300 फुट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है होम टिकला आकाशवाणी। आज ये देव का कद ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 23 जुबानों और 146 इलाकाई लोगों की बोलचाल की बुनियाद से मुख्तलिफ सामाजिक आर्थिक पहलुओं के अलावा लोगों की तहजीब व तमद्दन को भी अपने ज़ेर असर लिए हुए है। एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न 11 हिंदुस्तानी और 16 विदेशी जबानों में अपना प्रोग्राम नशर करती है जो तकरीबन 100 ममालिक के लोगों को अपनी नशरिया खूबियों से मालामाल करती है। ये नशरियात मुल्क के हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले लोगों को मुल्क की तरक्की से बाखबर रखती है और उनकी तफरी का भी एक मौजू ज़रिया बनती है। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सर्विस डिवीज़न हर रोज़ तादादी 647 नशरी खबरनामे लोगों तक पहुंचाती है जिस काम को सरंजाम देने में तकरीबन 56 घंटों का वक्त दरकार होता है। इस प्रोग्राम को नशर करने के लिए 90 जबानों और मुख्तलिफ इलाकाई जबानों का सहारा लिया जाता है। ये नशरी खबरनामा मुल्क के अवाम, इलाकाई और दीगर सर्विसेज को अपनी तहवील में लिए होता है। 314 न्यूज़ हेडलाइंस एक एक घंटा के वक्फा के साथ 41 इलाकाई ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से FM यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की वसासत से दर्शक किए जाते हैं। 44 इलाकाई न्यूज़ यूनिट्स रोज़ाना 469 न्यूज़ बुलेटिन्स 75 जबानों में लोगों तक पहुंचाती है। इसके अलावा न्यूज़ सर्विस डिवीज़न मुख्तलिफ मौजूआत पर दिल्ली और इस गिर्दोनवा के इलाकाई न्यूज़ यूनिट्स से लोगों को मालामाल करती है। ऑल इंडिया रेडियो अपने FM चैनल से लोगों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और इन्हें AIR FM रेनबो का हिस्सा दिया जाता है जो शहरी आवाम को ख़ास तौर पर अपने ख़ास अंदाज में सकून अता फरमाता है। इसके अलावा वो 4 FM चैनल्स जिन्हें AIR FM गोल्ड कहा जाता है मिली जुली खबरों से आवाम को सुकून देता है। ये प्रोग्राम दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई से नशर होते हैं। FM वेव मुल्क के हर हिस्से को अपने पहलू में जगह देती है और इलाकाई स्टेशन से भी आवाम को आराम बाम पहुंचाती है। मरकजी सरकार के हालिया फैसले के मुताबिक डिजिटल मोड ट्रांसमिशन की ज़रूरत है बदलते वक्त के मद्देनज़र, लेकिन ये बदलाव आहिस्तगी से

0: होना दरकार है कदम बा कदम। डिजिटाइजेशन की वसातत से आवाम को बीते वक्त की निस्बत बेहतर और बेहतरीन सर्विस की उम्मीद करनी चाहिए। अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्लूई अकलबंदी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ज़माना आ गया है और इसके लिए कहना वाजिब होगा, बदलती है कदरें बरंगे ज़माना, फसाना हकीकत हकीकत फसाना, अब तक सुनाता रहेगा ज़माना। कही गई सब बातें ज़रूरी थीं और ज़रूरत के मुताबिक कह भी दी गई। ऑल इंडिया रेडियो ने हर शोबे में कामयाबी का परचम लहराया। जंगे आज़ादी के दौरान प्राइवेट रेडियो से अपना काम किया और आज़ादी के दीवानों ने इस मौसर तरीक़े का फ़ायदा भी उठाया। मिसाल हाजिर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन रेडियो स्टेशन की वसादत से आवाम में जज्बाए हुब्बुल वतनी का चिराग रोशन किया और ये कह कर के कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनके कांग्रेस और मुस्लिम लीग रेडियो स्टेशन ने मुल्क की आज़ादी की खातर एक मखसूस जज्बा पैदा किया। वैसे तो महात्मा गांधी और सुभाष बोस में सियासी सतह पर इख्तलाफात रहे थे, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब ये इख्तलाफात एक झटके में काफूर हो गए। वो दौर था 1942 का, जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया का नारा बुलंद किया। तब नेताजी ने कहा था, टुडे देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन माई थाट्स एंड देट ऑफ महात्मास, बट टुडे माई वर्ड्स बी टेकन एज वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी। शायद इसका मतलब है कि नेताजी ने महात्मा गांधी जी को अपने से ऊपरी सतह का लीडर मान लिया। ऑल इंडिया रेडियो ने तरह तरह के तजर्बों की वसादत से खुद को आवाम की नज़रों में ध्रुव तारा बनाया। जहाँ शास्त्रीय संगीत को ऊंची सतह पर मामूर किया, वहाँ खेल संसार की बढ़ती ताकत को भी मुनासिब सतह पर पहुँचाया। अंग्रेज़ी में मेलविल डी मेलो का अंग्रेजी कमेंट्री और श्री जसदेव की हिंदी कमेंट्री आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। ऑल इंडिया रेडियो का दायरा पहुँच महदूद नहीं है। अलग अलग मौजूदात पर जहाँ वार्ताकारों को अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका फराहम करता है, बहस में भाषा के लिए नामी गिरामी शख्सियतों को मद्दू किया जाता है। आज अगर जय कृष्णमूर्ति का फ़लसफा जेरे बहस है, तो कल अल्लामा इकबाल और सरदार अली जाफरी की नज़मात पर गुफ्तगू होती है। कभी सादत हसन मिंटो गुफ्तगू का मुद्दा बनता है, कभी उर्दू अखबारात का किरदार जंग आज़ादी के दौरान पर गुफ्तगू होती है, तो कभी नामवर उद्वा को इंटरव्यू का नमूना हाजिर होता है। ऑल इंडिया रेडियो एक पुल का सा काम करता है मुल्क हिंदुस्तान के लोगों का दिल से दिल मिलाने के लिए। जहाँ गीतांजलि का गान होता है, वहाँ सुब्रमण्यम भारती के नज़्मात पर भी चर्चा होती है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों में प्रोग्राम अक्सर होते रहते हैं। जहाँ विलियम शेक्सपियर की 154 सॉनेट्स का जिक्र होता है, वहाँ हेमलेट नाटक में भी बहस का मौजू बनता है। अब क्या कहिए कि क्या क्या नहीं है आकाशवाणी। इख्तिताम के तौर पर चंद गानों का जिक्र करना चाहूँगा जो आज भी आवाम के दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। ए कातबे तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। बेगम अख्तर का गाया हुआ, इस इश्क के हाथों से हरगिज़ न मफर देखा, उतनी ही बड़ी हसरत जितना भी उधर देखा। तानसेन फिल्म का एक गाना, बरसो रे काले बादल वा पिया पे बरसो, जैसे मोरी अखियां बरसें, बरसो रे काले बादल वा पिया पर बरसो। सुरेंद्र कौर का गाया हुआ, बाजरे दा सिट्टा सतली ते मरोड़िया, रुसिया जांदा माही असां गली विच्चों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये ज़मीनों आसमां शहीद हो, वतन की राह में। कहाँ कहाँ तक तहरीर में लाऊं आकाशवाणी की मसरूफियात को, तरक्की की राह पर कभी थकती ही नहीं। मंजिल कहाँ है इसे खुद भी मालूम नहीं, बस मालूम है अगर इसे तो ये कि चलते ही जाना है वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, और परचम लहराना है कामयाबी का ये कहकर कि ये आकाशवाणी है।
1: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬਰੰਗ।

अब तो दूर जाई जाने पे हैं। इस तो अगला वादा जेड़ा खुद ना सी करना कि हर रोज़ किसी एक व्यक्ति दी जरूर मदद करनी, लोड़बंदी मदद करनी। तुहानू इन्ना सुकून मिलेगा ना, तुसी अजमा के देखियो। पर सब तो पहली गल है कि तुसी अपने नाल वादा करना है कि तुसी एक इंसान दी मदद जरूर करनी है, किसी दी भी। और अखीरला वादा, सोण तो पहला तीन चंगियां गल्लां याद करनी है, कोई भी तीन चंगियां गल्लां जिन्हों याद करके थानू खुशी मिले। बस ये पांच वादे तुसी करने इस प्रोग्राम दे विच, क्योंकि असी जिंदगी हसीन बनानी है। प्रोग्राम का नाम भी जिंदगी हसीन ही है, तो असी घबराने की सानू कोई लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि आकाशवाणी का जिहड़ा वेड़ा तुहाडे लई हमेशा खुला है। हर रोज़ जिंदगी हसीन है प्रोग्राम दे विच आपां बहुत सारियां गल्लां बातें करते हैं। लो जी, इस प्रोग्राम दे विच हुण अगला गीत तुहाडे सामने पेश करन जा रहे हैं, आनंद माणो जी इस गीत का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार

0: निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान की विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल,

0: पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का

0: कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarter-final of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic 2-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness a performance by the Nad Vocal Ensemble.

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम सरगम चल रहा है और तुसी आनंद मान रहे हो गीत संगीत का। दोस्तों संगीत उपाशा है जो बिना शब्दां दे भी दिल दी हर गल कह जांदी है। एक कदे यादां नूं ताज़ा करदी है ते कदे चेहरे ते मुस्कान लियांदी है ते कई कदे तां मन नूं सुकून दी ठंडी छां बख्शदी है। सो अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं लगातार तुहानूं गीत सुना रहे हां ते इन्हां सुरीले सुरीले गीतां दा तुसीं आनंद माण रहे हो, इन्हां नूं महसूस कर रहे हो, इन्हां दे शब्दां संगीत नूं तुसीं अपने अंदर महसूस कर रहे हो। सो इस दे नाल ही इस प्रोग्राम नूं होर अगे वधाउने आ ते तुहाडे सामने हुण पेश है अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, हुण वेला हो गया है प्रोग्राम सरगम तो इजाज़त लैण दा। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, TRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.6 100.9 MHz, FM बैंड 100.9 MHz अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ये जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो की कड़ी ते 11 बज रहे ने। हुणी थोड़ी देर तुसी सुनोगे समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल

0: जी सौण दा महीना होवे, पैंदी बरसात होवे, सजना ने आना होवे ते पहली मुलाकात होवे, इहो जे दिन प्यार मुहब्बत दे सब दे वेड़े आण, सारयां दे दिलां दे विच ऐसियां ही खुशियां दियां चड़ियां भी लगन जी, साडी इसे ही उम्मीद दे नाल ते इसे ही तुहाडे लई दुआ दे नाल इस प्रोग्राम ते अज कीती है शुरुआत। ये महीना बड़ा सौन का महीना जो चढ़ेगा, मानसून तो जोड़ा है वह आ ही गया जी, तो सौन का महीना साडा चढ़ेगा तो चिड़िया जड़िया ने होर सोहनिया लगनगियाँ, तो धरती भी ठंड पवेगी जी, साढ़े दिल में भी ठंड पेगी। जिमें प्रोफेसर मोहन सिंह लिखते हैं ना कि भाई बदलों के डोले चुकी पौन दे कहारा ई वर्खा की वोटी जुल्फा कालिया तो शाह कस्तूरिया गवाह भुले राइया नूरा कन्नी कणियां दे चुमके नक बिजली दी नथ प्रथम नार वांग नंगी पिंड दी जूह विचों लंघी। तो वह भी लाइना मैनू बड़िया सोहनिया याद ने, वेखो परबतों दुआले घिर गए मेघ काले काले बागां विच कूक छिड़ पई मोरां दी जान खिड़ पई। कवियां ने बड़िया सोहनिया बातां बड़े सोहने गीत लिखे ने इस महीने ते, ते गीत दे नाल असीं शुरुआत की है जी एक बार फिर तो प्रोग्राम सौगात विच तुहाडा कर रहे हैं सारयां दा स्वागत। तो बड़े ही मैसेजेस जिहड़े ने साडे तक पहुँच चुके ने हुण तक, तो होर भी आने ने जी उन्हां दी भी उड़ीक है। तो स्वागत करदे हां जी मुकेश कश्यप जी ते उन्हां दे परिवार दा, शीतल कश्यप जी, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक, बलवीर सिंह जी, ये सारे जुड़े ने जी जिला मुरादाबाद पिंड दुलापुर उत्तर प्रदेश तो, इन्हों का कर रहे हैं जी बहुत बहुत स्वागत। तो साढ़े को इंद्रजीत मंगा ते नीरा मंगा जी पिट्सबर्ग कैलीफोर्निया तो भी सुनेहा भेज रहे हैं। बिल्कुल जी तुहाडी सौगात पहुँच गई है, जरूर जल्द ही तुहाडे इस वट्सएप की फरमाइश में मैं एक गीत फोनलाइन दे तो बाद फरमाइश तुहाडी करांगा जरूर पूरी। तो नमस्कार आदाब भेज रहे हैं जी आदर्श नगर मलोड़ पंजाब तो राज शर्मा, बीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साना शर्मा ते निवान शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैंस गेट नाभा तो सोमदत्त नाभा, कैरव नाभा, ज्योति राणी, गुरमन्नत, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा भी जी प्रोग्राम दे विच शामिल हो रहे हैं जी। सुरिंदर संधु जी, अनीता संधु जी, रोहित संधु, रितेश संधु, प्रतीशा संधु अते मैक्स गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर तो बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार ते शुक्रिया प्रोग्राम दे विच तुसी शामिल होयो जी। निघा स्वागत करदा हाँ तुहाडे सारे दे, साडे फोनलाइन दे जरिए भी जी साडे पहले कॉलर जुड़े ने, स्वागत करदे हाँ उन्हां दा। प्रोग्राम स्वागत जी।
1: हेलो
0: जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा प्रोग्राम स्वागत दे विच ते तुहाडे इलाके विच पै रहा मी कुदरत मेहरबान ऐदा ही होवे हुण।

नजर मार खुद डिठा रोड चुरुड़ दी लाश उदाले इला का कुरड़ाऊंगे प्यो ने सैनत।

मोहम्मद सिद्दी आवाज सुन रहे जी मिर्जा ते चल रहा प्रोग्राम स्वागत है कोई फिर तो करना सब दा स्वागत है। अगला गीत सुनेंगे जी सन जो पे कैलिफोर्निया यूएसए तो इंद्रजीत मंगा ते नीलम मंगा जी दी फरमाइश ते आया जी फिरोज खान दी आवाज च गीत दी फरमाइश ते स्वागत पर नाल नाल करते जाइए जी टी डी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा जी प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ते डॉक्टर अमनदीप कालका डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो जुड़ रहे हैं जी शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज ते सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो सारा मल्होत्रा परिवार जुड़िया हुआ सी ते नाल ही कालका तो भी स्वागत करते हैं जी इन्हां सब दा प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत तुहाडा। अनारकली बाजार जगराओं तो सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा काव्या मल्होत्रा भाई सुचा सिंह पाठक सब जुड़े हुए हैं जी शुक्र प्रोग्राम विच शामिल हो रहे हो ते हरजिंदर छिंदा जसवीत जसीत सीता और गीता जी जुड़े ने पिंड थाणा बठिंडा तो इन्हों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ते बड़ा प्यारा जिहा सुनेहा भेजिया खुश रहो ते खुशियां वंडो का सुनेहा भेज रहे ने बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम दे विच तुसी शामिल हो रहे हो। लो जी सुनते हैं जी अगला गीत फिरोज खान की आवाज़ दे विच फरमाइश सानू आई है जी कैलिफोर्निया तो।

0: प्रोग्राम चाले जी स्वागत साढ़े अगले फोन कॉलर साढ़े नाल जुड़ चुके ने और कर दिया उन्हें दस स्वागत जी प्रोग्राम स्वागत
1: हेलो, सत श्री अकाल हरप्रीत जी।
0: सत श्री अकाल जी की हाल चाल
1: बहुत वधिया, होर तुसीं सुणाओ?
0: बहुत
1: चल
0: वधिया
1: रहा
0: जी।
1: मौज
0: कहाँ ते
1: लेवल
0: कितों गल कर रहे हो जी?
1: श्री गुरु रविदास नगर मलोट तो रसगनिया जी।
0: जी रसकनिया जी बहुत बहुत स्वागत। ते किवें तुहाडे इलाके दे विच किवें झड़ी लगी?
1: नहीं, इत्थे तां जी इक कड़ी नूं दस रहे। वैसे मौसम अज बणिया तां सीगा, पर ओह आई नहीं बारिश।
0: पै जाएगा जी। बस
1: नहीं,
0: 12 तरीक तक तां
1: तुसीं
0: क्या
1: कोई
0: भी
1: मंत्र
0: सी
1: मुंत्र मारो तुसीं कोई।
0: जी। 12-13 तरीक तक कह रहे सीगे जी, सारे इलाकियां च बह जाने मी।
1: हाँ जी,
0: ते चलो वधिया गल आ। ते
1: चलो हरप्रीत जी, अज मेरे बर्थडे दे उत्ते सारे दोस्तां नूं बहुत बहुत
0: वाह वाह
1: वधिया
0: जी, अज
1: बधाई।
0: तुहाडा जन्मदिन।
1: हाँ जी,
0: लो जी बेत बहुत बहुत मुबारकां जी तुहानू
1: मैं लगता केक मिल गया होना तुहानूं।
0: जी। मिल गया मिल गया, हाँ हुणे बस मिलिया।
1: मिल गया,
0: और
1: ठीक है
0: ते असीं हुण
1: थैंक यू।
0: गीत तुहाडी जरूर फरमाइश दा चलावांगे, ते उहदे उसे विचले टाइम च आपां खा लेणा केक।
1: हाँ जी,
0: ते
1: ठीक
0: बहुत
1: है।
0: बहुत मुबारकां
1: गीत
0: जी,
1: अज
0: ते
1: दस शुरू किया
0: तंदरुस्तियां
1: था कोई दस बारह
0: खुशियां दे नाल
1: स्टार्ट
0: जीवन
1: किया।
0: तुहाडा
1: अच्छा
0: भरिया
1: अच्छा
0: रहे।
1: हाँ जी,
0: मैं कह जी तंदरुस्तियां दे नाल खुशियां नाल तुहाडा जिहड़ी जिंदगी है उह हमेशा भरी रहे
1: हाँ जी, थैंक यू तुहाडा बहुत
0: जी। ते हाँ जी तुसीं कुछ कह रहे सी, दसो।
1: बहुत। गीत मैंनू वो सुना दियो, दरदार सिंह डमर नू जी दा कालियां कटावां जी।
0: कालियां कटावां, लो जी अज फिर
1: हाँ
0: आप
1: जी हाँ
0: भेज
1: जी,
0: ही देनियां कटावां तुहाडे वल।
1: कोई नहीं।
0: लो जी बहुत बहुत शुक्रिया। ते एक बार फिर तो जी साढ़े सारे परिवार वालों, साढ़े सरोते जिहड़े आणगे उन्हां वालों भी तुहानूं बहुत बहुत जन्मदिन दियां मुबारकां। शुक्रिया जी इहनां दा। ते लो जी सुणदे हां गीत दीदार सिंधु ते अमर नूरी दी आवाज़ च।

मेरी आवाज पहुंच रही थोड़े तक? नहीं जी, कोई इस तरह लग रहा जिम्मे तुसी यहाँ रेडियो दे सेट दे कोल बैठे हो या कोई मौसमी खराबी हो सकती है। हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही थोड़े तक जी? केड़ा गीत सुनोगे जी? मैनू लग रहा है मेरे तक आवाज पहुंच रही है पर बहुत घट, श्रोतियां तक पहुंचेगी कि नहीं? पर राजू जी बोल रहे हैं चंडीगढ़ तो जी, साढ़े नियमित श्रोते ने, तो मनमोहन वारस की आवाज़ से गीत सुनना चाह रहे हैं, तो इन्हों की फरमाइश करते हैं पूरी, मेरे तक आवाज़ जो भी पहुंची मैं इन्ना की समझ पाया जी। शुक्रिया फोन लाइन के लिए, तो फोन करने के लिए जी, लो तो फरमाइश, तो मनमोहन वारस की आवाज़ से सुन रहे हैं जी ये गीत।

लाल चल जब लड़जी दी आवाज सुन सी जी गीत ते प्रोग्राम चल रहा है सौगात साढ़े अगले फोन कॉल और जुड़े ने साढ़े कर दे उन्होंने गल स्वागत जी थोड़ा बहुत बहुत जी नमस्कार स्वागत जी थोड़ा जी राजू जी स्वागत थोड़ी आवाज़ थोड़ी घट आ रही है जी बहुत

0: अपने जन्मदिन भी फिर देनी है, याद
1: लो
0: कराते हैं।
1: ठीक है, कठी लवांगे पार्टी है ना
0: हाँ जी,
1: जी।
0: तुम
1: शुक्र
0: भी ला चलेंगे नाल।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आप आ जावांगे
0: हाँ
1: जी।
0: जी
1: शुक्रिया मंजीत जी, बहुत बहुत चंगा लगा गल करके। ते लो थोड़ी फरमाइश ते सुन दिया जी, फिर अगला गीत दुध पी ले जालमा।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी स्वागत है सुन रहे गीत मास्टर सलीम की आवाज च साढ़े फोन कॉलर अगले जुड़े ने जी कर दिया उन्होंने गल स्वागत जी बहुत बहुत
1: हरप्रीत जी सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल जी की हाल दिसराज जी

0: जी बिल्कुल, बड़ा चंगा सबक भी सी ते बड़े मजाके अंदाज च हसो एक हासिया रंग दा गीत सुनया जगजीत सिंह जी दी आवाज़ दे विच। ते सुनदे जी साडे नाल अगली फरमाइश लैके केड़े साडे फोन कॉलर पहुंचे ने साडे तक, जी जानदे उन्हां दा हाल चाल भी। स्वागत जी तुहाडा।
1: हेलो सर जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, की हाल चाल?
1: वधिया जी, तुसीं सुणाओ?
0: बहुत वधिया जी मेज़बान जी, स्वागत तुहाडा प्रोग्राम च
1: ठीक ठाक
0: जी। दसो केड़े गीत सुनाइए फिर अज?
1: गीत सर लावे छल्ला निमरत खैरा।
0: छल्ला निमरत खैरा, वाह कमाल जी, शुक्रिया प्रोग्राम विच शामिल होने दे लई। ते लो जी
1: हाँ
0: फिर सुनने तुहाडी
1: ओके
0: फरमाइश दा एक गीत। गीत जी छल्ला निमरत खैरा दी आवाज़।

सुनर्जी प्रोग्राम सौगात इस वेले रह गए जी केवल तो केवल 10 मिनट का समा प्रोग्राम की करांगे समाप्ति ते गीत संहिता पर सिलसिला इस तरह ही अगले समय के यानी कि पंजाबी मेलोडियस गीतों की झड़ी के जारी रखांगे जुड़े रहना जी तुसी इस तरह ही

गई, होय होय होय होय मंगनी हो गई, हाय हाय हाय हाय मंगनी हो गई, सुन कुड़िए नी साडी मंगनी हो गई, सुन कुड़िए नी साडी मंगनी हो गई, सुन कुड़िए नी साडी।

पोगवे अलिप्त रहे अलख न लखना जाई। इस करके प्रभु दे भगत गुरमुख जन अपने आप नू इस्त्री दी न्याई समझदे होए पति परमेश्वर अकाल पुरख नाल प्रीत दे अभिलाषी हुंदे होए प्रभु मिलाप दी लोचा रखदे होए बिरहो दी अवस्था विच बेनती जोदड़ी करदे ने। बाबा फरीद जी इस अवस्था नू बयान करदे हन, तप तप लोह लोह हाथ मरोराओ, बावल हुई सो सौ लोराओ, तय सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस। सरवण करदे हां भाई बलदेव सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द।

तप तप लोह लोह हाथ मरोरा, बावल हुई सो सौ लोरा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई बलदेव सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। जिहड़ियां जीव रूपी इस्त्रियां दे हिरदे विच प्रभु प्रेम दी तांग है, अकाल पुरख उन्हां दे हिरदे दी वेदना ते दर्द नूं जान लैंदा है।

0: मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने मेरे मन अंतर की पीर। इस शब्द का गायन किया सी भाई शमिंदर पाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: गौंड महला चौथा। हर दर्शन कौ मेरा मन बहुत तपता, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बे

ए मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे, राखन कौ तुम एक। इस शब्द का गायन किया सी भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: सब को निवे आपको पर को निवे ना कोए तर तराजू तो लिए निवे सुगोरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है सी सुनवाए क्या थी है दे जाहे।
1: पर पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजिस बगल समादंग मुख चूड़ विभुखन सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक लाटंग दो तो ती वस्त्र बाटंग जय जानस ब्रह्म करमंग सब होकर निश्चय करमंग कहो नानक नहचो तिहावे

बलजीवाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फातह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती स्मर कै गुरु नानक लाई ते आए फिर अंगद गुर ते मरदास रामदास हुई सहाय।

जन हर गोबिंदनो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई। तेग वाहि देख के अण डिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तर के खाल।

0: दया कृपा संतोख सूजक गंडी सतवट ए जने जी का है तब देखत ना हो टूटे ना मर लगे ना हो जड़े ना जाए तन सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौंकन मुंह लाया बे चौंके पाया शिखा कण चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थी जा ओ मुंह आओ चढ़ पया तगा गया महला पेला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठकियां पहना मियां रात दिन सजी नाल तग कबाव कतिये बामन वटे आए कोई बकरा रिन खाया सब को आखे पाए कोई पुराना सटिये ही पर पाई है होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जो
0: महला पहला नाय मनिए पथ उपजे साला ही ससूत दरगह अंदर पाइये तग न टूट सपूत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी वे तग आया

0: सुत क्यों कर रखिए सुत पैर सोए नान सुत के नौ तुरे ज्ञान उतारे तोए महला पेला।
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुत कूड़ अखी सुतक वेखना पर त्रया पर धन रूप कनी सुत कन पहला इतबारी खा नानक हंसा आदमी मदे जमपुर जाए।
0: महला पहला सबो सुत परम है तुझे लगे जाए जमन मरना हुक्म है।